0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है, जो बादशाह हकीकी पाक ज़ात जबरदस्त हिकमत वाला है।
1: वॉइस ऑफ नॉर्वे से मैं हूं आपकी प्रेजेंटर अंबर हकान। खूबसूरत नगमात, अछूते खाके, कौमी खबरें, बैनुल अक़वामी खबरें, खेलों की

मुद्रा और करेंसी रेट्स। पल पल की खबर हर पल, आपकी पहचान आपकी जबान, आपकी आवाज, वॉइस ऑफ नॉर्वे।

0: आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है।

स्वामी 14 अगस्त का जश्न मनाने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए तरीकाकार को अपनाएं। बड़े सगीर के मुसलमानों को अगर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत मुयसर ना होती तो मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन हासिल करना मुमकिन ना होता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 वारिसें छोड़ी, एक पाकिस्तान, दूसरी कौमी परचम जो हमारी अजमत और वक़ार का निशान है, और तीसरा उर्सा उनके नज़रियात और तसव्वुरात हैं जो उनकी तकरीरों और तहरीरों में महफूज हैं। आइए वतन अज़ीज़ को दुनिया का अज़ीम तरीन तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का अहद करें। आइए कदम मिला कर मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती के साथ वतन की तामीर नो में हिस्सा लें। ऐ दोनों जहानों के मालिक, ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमारी आज़ादी को बरकरार रखा। ऐ रहीम ऐ करीम, हम पर रहम कर, हमारे गुनाह मुआफ़ कर और हमें तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, इज्जत है, इससे वाबस्तगी के एहसास में शिद्दत अता कर, हमें तौफीक दे कि हम जो भी हो जहाँ भी हों पाकिस्तान के मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह दें। ऐ रब काबा, तो पाकिस्तान की दुश्मन कुवतों का रुख उनकी बर्बादियों की तरफ मोड़ दे। ऐ रब्बुल आलमीन, तू रहमतुल आलमीन के सदके रहमत फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से बचा। परवरदिगार पाकिस्तान को सच्चे मुसलमानों की खिदमत से नवाज, इसके सदर वज़ीर आज़म और हिज़्ब इख़्तिलाफ़ के लीडर को तौफीक अता फरमा कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किए गए पाकिस्तान की उसी जज्बा से खिदमत करे जिस जज्बा ने पाकिस्तान को जन्म दिया और कायद आज़म ने हमें ये तोहफा दिया।